Soy. हमारा एक शहर है हेरात, ईरान के बॉर्डर पर है वो, एक वहां के ये लोकगीत है पर्शियन में, फारसी में। जरा लाइक बिठा कर